0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: ताकि तादाद 22 रसीद ले
1: लेंगे प्यार में।
0: तो वर्ल्ड कप 2026 के एम्बापे ना इलावा मेसी जी कमदे जना बागा 8 गोल्स सी दिया गाव मकड़े सो जना नो गोल्डन बूट अवार्ड चकम दे जना बागा चाद मिल अवश्य दे अस्त मनु वागा सरी अजल तो व्यावाई मां एम्बापे ता औदी सर सर कम जी लमिनी यमाल कम जी द फ्रांस लोबगाड़े बिल्कुल जनाब देर बेहतरीन अंदाज के खेले अगर पेश कर दे अगेंस्ट अर्जेंटीना और अगर रंगनो चिकम ग्रुप मैच ही जूं मगम बेहतरीन पोजीशन के अगर आ गए नहीं तो सो जनाब दा फुटबॉल वाले सर अपडेट हो दे सर सर असल बोले अपडेट चीज अगर दरको जनाब लोकल सतह बंदे हुमा फुटबॉल मैच दी अगर रवान दी कगा मुंगा स्पेशली द पगोड़ा खबर होगो PFL यानी पगोड़ा फुटबॉल लीग अगो मशहूर शिविर है इंटरनेशनल तरफ तक जनाब नु क्रिकेट के जिम्बाब्वे और इंडिया दुमनी T20 मैच आगे बिल्कुल शुरू दो इनफेक्ट शुरू शी बहुम के 4 बजे मैच टॉस चुकम दे जनाब आगा जिम्बाब्वे गठिलो और फील्डिंग फैसले खड़े था इंडियन क्रिकेट टीम जिना बगा दावत पर रिकॉर्डी बिठे याद दबी पहले ने T20 मैच कम दे जिना बगा जिम्बाब्वे बेले ले दे और इंडियन क्रिकेट टीम जिना बगा पहले ने T20 मैच अगा अखपल पर नुम कर दे तो जिना पता T20 मैच के इंडिया चिकम सूरत हाल ने दम हार सरोर इशारिया मतलब 4.2 ओवर चिदिया का शिविर है इंडिया 38 रन दिए दो खिलाड़ी चिकम दी जिना बगा आउट शिविर है दम हाल ईशान किशन चिकम दी जिना बगा पिंजूर रन जुनू बदे बैटिंग गई और शेरियस ईयर कम चिरा के कैप्टन ने बगा सरोर रन जुनू बदे बैटिंग गई रिचर्ड नगारवा चिकम देगा थल्ला सकट रहे अपडेट दादी श्री कोम जनाब नो बिल्कुल जनाब सूर्य वंशी नगर 20 रन सीधी जनाब आगे जुड़कड़े बाद अकबल विकेट त्रोकड़े रहे तीसरा सरा अभिषेक शर्मा 8 रन सुनो बंदे उठ शिविर ईशान किशन दा महाल बैटिंग गई पिंजू रन सुनो बंदे शेरियस ईयर चेदी जिना बा कैप्टन होम दे सरो रन सुनो बंदे दा महाल वाला ने दादलुन के प्लेयर की कम खबर हो गो दिलक वर्मा

0: अवधेश ठाकुर ने अलावा कम खबर है को मैं ना क्या दे बे कुछ ना दादा रे प्लेयर दे او دغه چکم صورتحال دې د زمبابوې آی بس ورګ کم کمپلیټ دي نه بالکل جنا بغا د سره مو د پروګرام سره جوړو ما چې تاسو په پتو لګیا زمبابوې له خاص کم کمپلیټ شي دغه لوبيږي زمبابوې له خاص کم پلیرز نن لوبيږي پلینګ 11 ایسه دي راي کې برین بینټ بن کر ډاین مایلز سکندر رضا کیپټن بیان بل ویسلی مډریو मरुमोनी विकेट कीपर बैठे ब्रेड इवेंस न्यूमान न्यूमानी रिचर्ड गारवा प्ले सिंह मोजराबानी बिल्कुल कुछ ना था प्लेइंग 11 दे सौ जी ने आपको मुंगे देखे स्क्वाड खबर है जिम्बाब्वे सफाद जुआन बेंच प्लेयर दे इनसेंट खेया हम बेंच प्लेयर दे सना का चिवंगा अगर बॉलर दे जना विलिंगटन मसाकर्ट सा अगर हम बॉलर बेंच पे अंदी दागा प्लेयर सी दागा नास्ती और सपोर्टिंग स्टॉक की कमुगा खबर होगो जस्टिन सिमंस अगर हेड कोच दे डॉयन इब्राहिम अगर असिस्टेंट कोच दे कोरंटी वॉश अगर बॉलिंग कोच दे ऑस्ट्रोट मिस्टर हम ग्रहण नमूने दी स्टार्ट जिकम दे जना बगा फील्डिंग कोच दी दगरंग के मुंदे इंडिया खबर हो जनाब कम छे दगे प्लेयर्स दी बेंच प्लेयर कम ना जनाए के सूर्यंश अगर बैटिंग ऑल राउंडर दे जनाब और दगरंग के हर्ष ड्यूबे अगर बॉलिंग ऑल राउंडर दे और दे सरसरा टॉप सिमरन चिकंदे जनाब आगा विकेट कीपर बैटर दे अशोक शर्मा आगा बॉलर दे सपोर्टिंग स्टार की खबर है उनको वीवीएस लक्ष्मण आगा हेड कोच दे सुनील जोशिया बॉलिंग कोच दे
1: खुल के खेल प्यारे जब तक तू डरेगा दिल में आया जो है वो कब तू करेगा खुल के खेल
0: प्यारे हर चीज कनेक्ट कर चिकंदे जनाब आगा बैटिंग कोच दे सौ जिना इंडिया उदा शांति जम्बुआ बेकम दुई मनी और टी ट्वेंटी मैच है बिल्कुल रवान दी दमहाल लाइव अपडेट प्रोग्राम से जुड़ो मा दमहाल दे इंडिया चिकम स्कोर दी जिना वगा देख था दिस रन दो के लड़न जिदा आउट छी विदी पिन ज उर रगा प्रथम तरफ तार से दे रे पणबनी ओडिया मैच पणबनी टी ट्वेंटी मैच केन फिर जम्बुआ बे चिकम दी जिना बागी शिकस पड़े ले दी दे इंडिया ना और दिन मके जिदा इंडिया कम सीरीज छे वे दे अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट आयरलैंड बैक टू बैक सीरीज चिकम दी अगर दुई लॉस करे दे सौ जिना गुरु जाए पति सीरीज की दूसरे सीखेगी सौ जिना पति ने अलावा पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज दुई मनी फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच आवाज पाकिस्तानी वक्त मुताबिक वो बजी शुरू की गई पाकिस्तान तो वेस्ट इंडीज सर मीन टी ट्वेंटी टेस्ट मैचों ने जिकम दी जिना बाग सीरीज की टेस्ट मैच जनाब नन भी ओबल टेस्ट मैच जनाब आप 2 अगस्त बंदी भी पाकिस्तान पर स्क्वाड की कम कम प्लेयर शामिल नहीं मीडिया वाले सर खबर रखो और जाने बाद भी आके सी एल यानी खैबर पख्तूनख्वा चैंपियन लीग अगले वाले सर अपडेट जिकम दिया प्रोग्राम से जुड़ा हो

0: एनी वेज नाम से सुकम कॉल राजे पर 0301-711-8899 में आबाद प्रोग्राम में से जुड़ो जुबल कॉल तरफ तक गुरु सर बिल कॉल को उनके सुखदेव तक हम जाना दीजिए अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब ये सो खबर की वेलकम जनाब
1: मिनानो ना खबर इसको नाम
0: मिनानो ना सोक नाम रखा पहले वाखले
1: इमानुल्लाह
0: इमानुल्लाह के इबादुल्लाह
1: इमानुल्लाह
0: इमानुल्लाह जी इमानुल्लाह पर वांग के तो हर कले भाई इमानुल्लाह तो खेल
1: खेल रे
0: इमानुल्लाह क्रिकेट सर तो शोक शता करना कम की लड़ते डर खोखते मरा कम की लड़ते डर खोखते
1: बैटिंग
0: में डर खोखते तो चाहे बैटिंग तेरा डर मजा आ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तो चाहे बैटिंग डर खोखते ताला साइम अयूब दा वाले
1: कना
0: बॉलिंग जो बिल्कुल टिक टॉक हिम तो खैब अखबला सही डेर मंद ने गुखा खुशहाल है उससे ओके भाई अल्लाह हाफिज वालेकुम सलाम बिल्कुल जनाब दाऊ सर ईमान अल्लाह सिंह फिर कॉल को डेरे ज्यादा मंद ने कहो This time from Africa.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

0: नेक्स्ट मैसेज आया है, हाय हाय टू यू टू, हाय खेराव, आपने कुछ भी नहीं लिखा फिर भी हम आपका बहुत ज्यादा शुक्र तक गुजार हैं, आपका बहुत सख्त सख्त समझना। नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज मुनीबा बाई, मैं मुनीबा हूँ बाई, जिंदगी द खुशाल जिंदगी हम देखे शांतिगी जिंदगी चिकम दई जिंदगी चिकम दे दू चैन लाइफ इस चांस सो डोंट लूज इट डोंट वेस्ट इट यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ यू हैव टू अचीव योर गोल्स एंड फर्स्ट यू हैव टू सेट द गोल्स एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर इट मतलब क्या बोलता सो खपल जान पर सो के सो गोल मुकरर के बेदा के नवा दे पर मेहनत हो के सो इंशाल्लाह आगा अखपल पजन के तरला सके
1: बल सदर यो पॉइंट खबर
0: करवान हां उली उला
1: देर मजार खबर सो जंग रेडियो मन और जून की दिगान दागेर पर यो कम चला आशिकान मशिकान देर पर यो खबर हमारे से रोड़ा अपरा से गिरा से मा मख रोज के यो वीडियो में कहता यो कसी नागा खुदकशी कही तमाचे देख दी
0: गया
1: खुदकशी को नाकामी जिन्हें मासा मोहबन के दान के
0: गा
1: नाको थोड़े मजदार खबर सुन उमरा जमा तक बंद सब 25 साल उमर दे जिन्हें सरकस तक उधरे क्या लिखी तमा तू गांव चीरा 22 साल चार आलू की चार तापस मंड तरलू आए बाईस काल चाहे मोटे दगा का दरे जान मर के
0: अस्पताल
1: ताकू दगा न गोरा यो दरे कालो
0: खबर हुई खता खड़े खुदे बंदे खबर अतर हुआ।

मुझे आपकी समझ नहीं आई है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। सलाम सलार भाई और आप तीनों को सलाम, मतलब मैं तबरेज की जगह से भी मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह माफ करता है लेकिन बंदे माफ नहीं करते। पता नहीं बंदे का मकल है ना समझ, इसलिए माफ नहीं करते। हाँ नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज ठीक ठाक। अच्छा थैंक यू अखबल अखबल खबर हम जान सर साथ ही तस्वीर बता डे रखे।